मछली ओए ओए यार यार यार यार यार गौरे ओए ओए ओए राखी ओए ओए खमशी खजाले ओए बिन या छमे आमुदे